0: लाइका गोल्ड सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इन अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
5: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ

0: Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam, live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: लाइक अ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: ये है लाइका गोल्ड। CTV and C5 proudly present हमारे राम, produced by Felicity Theatre, India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
6: हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

आवे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कहे सिर भार होए।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते वहां।

तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

नाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: towards the High Road at Leighton. That's with ongoing roadworks continuing until the 17th of May, that one. Elsewhere at Chadwell Heath, we've got Whalebone Lane North on the northbound side, just reopened after the recovery of the earlier accident. Not looking too bad at all elsewhere. Galley Hill Road at Swanscombe, we've got that closed there both directions with the roadworks and tier tubes. Jubilee Line and Metropolitan Line, we've got no service in the Metropolitan and severe delays in the Jubilee Line due to the late finish of some engineering works this morning. That's your latest traffic and travel.
1: Euromol Dual Action contains the power of ibuprofen
2: and the strength of paracetamol
1: combined together to provide faster, longer-lasting, more effective relief than regular painkillers alone. Hit pain hard
2: with Euromol Dual Action Pain Relief.
1: Contains ibuprofen and paracetamol for pain not relieved by regular painkillers. Ibuprofen or paracetamol individually.
2: Always read the label.
3: Yeah, like a gold.
4: Keep calm,
5: Nilo,
4: keep calm.
5: Bol ke, jaan
6: Fifteenth May ko Prajapati Pandey lekar aa rahe hain full on confusion aur double dhamaka. Kaun patni, kaun wo? Sawal bahut hai, answers aur bhi entertaining. Pati patni aur wo do. Parivar ke saath dekhiye 15th May se cinemas mein.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
8: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
11: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
14: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
13: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
14: गारंटेड.
13: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
14: फोन 02085748410.
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
15: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल
16: ने शू लागे छे हूं या साचे वेडिंग प्लान करवावी छू.
15: वहां की चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तमलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मई.
17: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहु मिस करी छे.
5: Like a Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
17: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 our line.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश। एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
10: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरुजी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट Dasham official website.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: This week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
13: Saw Calpol Children's Medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time, for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
12: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
14: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: What a classic that is from the hit film Anbar. You heard here on The Breakfast Show. 7:34 is the time. A very good morning, Kajal, with you till 10 o'clock here on The Breakfast Show. A lot of you getting the answer wrong for today's Bollywood flashback. It definitely isn't Golmaal.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: Okay, so let's quickly rewind and we'll play the same dialogue for you here on The Breakfast Show, and you work out the name of the film for today's Bollywood flashback.
2: मैडम, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ।
3: ये तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन तुम हमारी बस में घुसे थे।
2: अरे मैं बेवकूफ उसी दिन को कोस रहा हूँ। ना उस दिन नाच रहा था और ना आज मेरा बैंड बाजा बज।
3: इतनी जल्दी घबरा गए? हमने तो तुम्हारी बारात निकालने का फैसला किया है।
2: मैडम, मेरी बारात निकालिए, जनाजा निकालिए, जिस्म से जान निकालिए, लेकिन इस कमरे से मत निकालिए, क्योंकि इस कमरे से निकल गया तो शिमला से निकलना पड़ेगा और शिमला मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन है। आप जो जी चाहे सजा दीजिए, लेकिन नौकरी बचा लीजिए, क्योंकि मेरी माँ।
3: तुम्हारी माँ है?
2: हाँ हाँ, अब तक तो है। अगर उसे मालूम पड़ गया कि मेरी नौकरी चली गई, शायद वो
4: WhatsApp message like a gold now on 07:44, 23:23:23.
0: I think from this now you can work it out.
4: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currencies are trading at 129.38 Indian rupees, 377.62 Pakistani rupees and 439.11 Sri Lankan rupees.
5: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Across Greater London. This is Kajal on Breakfast.
0: Okay, so try and work out today's Bollywood flashback. In the meantime, let's go back 33 years, because on this day, 33 years ago, Parampara was released. And of course, this film was a huge cast, massive hit film with Sunil Dutt, Vinod Khanna, Ashwini Bhave, Aamir Khan, Saif Ali Khan, Ramya Krishna, Neelam, Raveena and Anupam Kher.

0: गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
6: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
5: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
6: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
7: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
8: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी कभी भी।
9: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
10: Prem past and future bache atkailu ek deal.
11: Humne shu lage the. Hu yahan saache wedding plan karwa bichu.
10: Wahan ki chuki love story. Starring Pooja Joshi, Parikshit Tamalia, Bhavin Bhanushali, Miloni Johnsa. A film by Dhwani Gautam. Releasing on 15th May.
12: Aa family wali feeling ne main tya bahut miss kari sir.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
15: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Gold Breakfast with Kajal.
17: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
2: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

गुड मॉर्निंग। स्वागत है, खुशामदीद जी आया नू, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में बहनों भाइयों दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ लेकर के मनोरंजन प्रोग्राम। बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के मई महीने की 14 तारीख और भाई वक्त वही जब आप और हम मिला करते हैं और संगीत के सुहाने सफर पर साथ साथ चला करते हैं। लेकिन भाई आज बृहस्पतिवार है इसलिए कुछ ऐसे भी गीत होंगे जो साथ चलने वाले नहीं, साथ छोड़ने वाले, दिल तोड़ने वाले भी हो सकते हैं। कुछ एक गीत पर उन्हें भी तो जगह मिलनी चाहिए ना, और आज के दिन हमारे कुछ श्रोता इस तरह के गीतों का इंतजार किया करते हैं क्योंकि वो दर्द से प्यार किया करते हैं। तो इजाजत है,

0: सभी जख्म जख्म से मरहले, सभी बेयकीन से सिलसिले, कोई और वक्त मिला जिसे उसे पूजता कोई और है। कहीं चांदनी के गुब्बार में तुझे छोड़ के कोई आ गया, और कहीं जुगनुओं की कतार में तुझे ढूंढता कोई और है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica.
0: कहीं चांदनी के गुबार में तुझे छोड़ के कोई आ गया, और तुझे जुगनों की कतार में ढूंढता कोई और है। कहीं जुगनुओं की कतार में तुझे ढूंढता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, और तुझे चाहता कोई और है। ऐसा होता है तभी दर्द जन्म लेता है।

0: दूर से ही दिल की प्यास बुझती रहे, नजदीक आने की इजाजत नहीं। सांस लेने से जिस्म दुखता है, क्या कहूं किस कदर थकावट है। सच्ची खुशियां करूं तलाश कहां, जिस तरफ देखिए बनावट है। किस तरह प्यार पे यकीन आए, सारे रिश्तों में अब मिलावट है। पास तेरे भी आ नहीं सकती, राह में हर जगह रुकावट है। What a song, and that was from film Bobby, और I think that was picturized on Aruna Irani. भाई ध्यान नहीं मुझे अरुणा ईरानी पर था या वो बेबी फरीदा, नहीं बेबी नहीं, वो अब तो फरीदा जलाल बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन साहब फिल्मों में तब से काम कर रही हैं जब से वो बेबी फरीदा होती थी गुनाहों का देवता में उनका छोटा सा रोल, उससे भी पहले वो मेरा ख्याल राम और श्याम और कई फिल्मों में वो बच्ची के रोल में आई थी, पर उस समय से बड़ी प्रभावशाली अभिनेत्री। भाई ये गीत जो है दर्द भरा वियोग, और आप जानते हैं राज कपूर तो संगीत के पारखी थे, वो भाई किसका संगीत था बॉबी फिल्म में, शायद लक्ष्मी प्यारे का। भाई संगीत तो बहुत ज़बरदस्त होता था राज कपूर की फिल्मों में, तो दो गीत हमने आपको परोसे, दो गीत सुनवाए। पहला था तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, होता है, एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द दिल है कि मानता नहीं, क्या से मनाया भाई दिल को साहब। और ये था फिल्म बॉबी से दो गीत सुनवाने के बाद अब हम आपको बताते हैं पाउंड का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने पैसे दे रहे हैं आज एक पाउंड के बदले।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India, UK, telling that it's a still nice rate if you want to send money to your family members back home in India. भाई एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में, they are giving 129.05 rupees maximum. और साहब यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
4: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
6: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मई।
1: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे।
2: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
3: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
2: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
4: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
8: मैं कलियों से घिरा रहता हूँ पर खुशबू नहीं आती। मैं कलियों से घिरा रहता हूँ पर खुशबू नहीं आती। वहाँ रौनक नहीं होती जहाँ पर तू नहीं आती। घड़ी टिक टिक तो करती है, टिक टिक घड़ी टिक टिक तो करती है, कहीं टिक कर नहीं बैठी। घड़ी जो तुझसे मिलवाए घड़ी वो क्यों नहीं आती। और तुझे मैं हाले दिल लिख भेजता पर हाय मजबूरी। तुझे मैं दिल का हाल लिख भेजता पर हाय मजबूरी। तुझे हिंदी नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती। ए भाई, बृहस्पतिवार है, हंसने हंसाने की बात नहीं। नहीं भाई, गंभीर बात है। मुझे याद है कि यहाँ लड़कियाँ जब कभी चाय कॉफ़ी बना के दी जाती हैं स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बुजुर्ग और वह सेवा कर रही हैं। पर वैसे ही एक बार अनीसा जी ने चाय देते हुए कहा था, शर्मा जी साथ में कुछ लेंगे? मैंने कहा लूँगा, एक प्लेट उर्दू ले आओ। एक प्लेट उर्दू? अरे साहब, क्या नफीस उर्दू बोलती हैं वो। लेकिन साहब, उन्होंने कहा कि उर्दू सीखनी है शर्मा जी, तो आप अपने वहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ का दौरा करके आइए। अरे साहब, लखनऊ की हवाओं में उर्दू है। वहाँ तो गांव में उर्दू है, शहर में उर्दू है, नगर में उर्दू है, घर घर में उर्दू है।

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये लखनऊ की सरजमी भाई गीत सुना हुआ बढ़िया लगा बिल्कुल एकदम उर्दू जैसे नफीस। और उर्दू के बारे में बात कर रहा था मैं तो एक बार इंटरव्यू के दौरान मेहदी हसन साहब ने मुझसे कहा था कि शर्मा जी उर्दू बढ़िया सुननी है तो आप उधर अलीगढ़ लखनऊ कानपुर उधर जाइएगा और ये उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है आप इसे पराई ना समझें। तो मैंने कहा कैसे मैं पाकिस्तान की नहीं बोले नहीं पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है उससे भी बढ़िया हिंदुस्तान में बोली जाती है और हिंदुस्तान से जो लोग आए हैं मुजाहिर बनके वही उर्दू अपने साथ लेके आए हैं वरना आमतौर पर वहाँ तो पंजाबी भाषा और फिर उससे आगे जितना जाएंगे तो भाई उर्दू जो है वो कमज़ोर पड़ती जाती है। बढ़िया उर्दू के लिए थैंक यू मेहदी हसन साहब सुझाने के लिए कि यूपी में बोली जाती है राइट। और बहनों भाइयों अब समय हो गया है खबरों का यस 10:30 बज चुके हैं आइए सुनते हैं आज के प्रमुख समाचार लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक जवाब ने उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को लेकर अटकलें पैदा कर दी हैं। पहले खबर आई थी कि टेंपल ऑफ हेवन में फोटो खिंचवाने के दौरान बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से वेट कहा था इंतजार करो। हालांकि अब अमरीकी प्रेस पूल में इसमें सुधार जारी किया गया है। इसके मुताबिक ट्रंप ने वेट नहीं बल्कि ग्रेट कहा था। ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि बेहतरीन जगह अविश्वसनीय है बहुत खूबसूरत चीन बहुत सुंदर है। दोनों नेता टेंपल ऑफ हेवन के जाने माने प्रतिष्ठित मुख्य भवन के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे प्रेस पूल के पत्रकारों ने दो बार पूछा कि क्या दोनों नेताओं के बीच ताइवान पर चर्चा हुई पर दोनों में से किसी ने भी जवाब खुलकर नहीं दिया। भारत से आने वाली खबरों में भाई कल आए तेज तूफान बारिश और ओलावृष्टि के जो असर देखे गए हैं वैसे ओलावृष्टि यहाँ भी हुई तेज बारिश और ओले गिरने की घटना घटी। ओलावृष्टि के चलते भारत में उत्तर प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन और राहत कार्यालय के मुताबिक इस आपदा में 89 लोगों की जान चली गई है यूपी में हुई इस भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान बारिश ओले गिरने और आकाशीय बिजली की घटनाओं में 53 लोग जख्मी भी हुए हैं और 114 मवेशियों की भी मौत हुई इस घटना में। दिल्ली में प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंगरेप का एक इल्जाम सामने आ रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई इलाके में एक प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आज बताया जा रहा है कि यह घटना 12 मई को हुई थी। हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बस के ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक बार फिर कोलकाता के हाईकोर्ट में दिखाई पड़ी। तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर बयान जारी किया है कि टीएमसी की प्रेसिडेंट ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से चुनाव के बाद फैलाई गई व्यापक हिंसा से जुड़े मामले में इलेक्शन के बाद जो वायलेंस की घटनाएं घटी उनके मामले में दलील रखने के लिए खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। और साहब जबकि बीजेपी का कहना है कि जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो टीएमसी वाले ही कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता बन करके बनावटी वो तृणमूल कार्यकर्ता थे असल में छानबीन जारी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने संगठन के ढांचे के भीतर सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है और इस साल के अंत में ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है। रूस, ईरान, ब्राजील और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली इस बैठक का उद्घाटन करते हुए भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े भू राजनीतिक, आर्थिक और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अनिश्चितता ये भाई कहीं थोड़ा सा उलझन में, उहोपोहो में। एस जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब इंटरनेशनल रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। केरल में नए मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रदेश कांग्रेस आला कमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल यानी एमएलएज की जो बैठक हुई उसमें 7 मई को तिरुवनंतपुरम में होने वाली इस बैठक में सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुनने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी गई यानी खड़गे साहब को दे दी गई। अब प्रवक्ता ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के संसदीय चेयरपर्सन और लोकसभा में अपोजिशन लीडर भी उनके साथ विचार विमर्श करके, सांसदों के साथ गहन विचार करके और वीडी सतीशन के नाम को सुझाया है। और अब बता दें कि वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई जो चीन के दौरे पर हैं और उनके 2 दिन के दौरे से कई खबरें जो है वो अटकलों को लेकर के सुनने में आ रही हैं। ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों से पूछा गया कि दोनों नेताओं के बीच ताइवान पर चर्चा हुई या नहीं हुई, कहते हैं वो टाल मटोल करते रहे लेकिन ये समझ में आ रहा है कि चीन ने साफ साफ कह दिया है ताइवान पर दखलंदाजी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच तय समय से 1 घंटा ज्यादा तक उनकी बातचीत चली और आज शाम डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में एक स्टेट जो है बैंक्वेटिंग, यू कहिए कि राजकीय भोज आयोजित किया जा रहा है, इसमें दोनों नेता मौजूद रहेंगे। उधर ताइवान ने अमेरिका के समर्थन पर आभार जताया है यानी अमेरिका की हिमायत ताइवान के साथ है, लेकिन पता चला है कि शी जिनपिंग ने ताइवान पर अमेरिका को वार्निंग दी है, ये चीनी सरकारी मीडिया कह रहा है। न्यूयॉर्क में चल रहा था चाइना का एक सीक्रेट पुलिस स्टेशन, सुनने में आया है चौंकाने वाली खबर। 64 साल के लू जियानवांग पर इल्जाम था कि उन्होंने 2022 की शुरुआत में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में चाइना टाउन इलाके में एक चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के लिए एक स्टेशन खोला और संचालित किया चलता रहा। चीन के मुताबिक इन ठिकानों को पुलिस स्टेशन मानने से इनकार किया उन्होंने। उनका कहना है कि ये सेवा केंद्र हैं, सर्विस सेंटर है चाइनीज लोगों के लिए जो विदेशों में रहने वाले चाइनीज सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: वेरी गुड मॉर्निंग, लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये है मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा। लौट आइए संगीत की दुनिया में। किसकी तलाश है भाई, जरा सोचिए, कोई सपेरा बीन बजा करके उबड़ खाबड़ जमीन पर खड्डों में कुछ ढूंढ रहा है।

0: भाई ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाली। भाई एक बार ये गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किया काफी समय पहले, और फिर साथ में कह दिया कि ये वो गीत है जिसमें मनोज कुमार साहब दो दो हीरोइंस पर लाइन मार रहे थे। तभी उनके बेटे भाई विशाल का फोन आया, कहते हैं रवि जी पापा जी सुन रहे हैं, जरा संभल के बोलना। फिर मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि मनोज साहब सुन रहे थे भाई, कभी कभी वो सुन लेते हैं, सुनवा देते हैं, और उनके बच्चे सुनवा देते थे उस समय। अब तो वो दुनिया में नहीं है लेकिन याद आते हैं मनोज साहब ऐसी फिल्मों के कारण। विशाल के साथ काम करने का मौका मिला था इसलिए भाई थोड़ी सी वो क्या कहते हैं घनिष्ठता बढ़ गई थी। है साहब गीत संगीत सूचना समाचार चिंतन विचार ये सब आपको मिलता है लाइका गोल्ड।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Well, मैं आपको रेट्स बता देता हूँ भाई। स्विफ्टली जो है इस समय एक पाउंड के बदले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 129.49 रुपीस, पाकिस्तानी 376.61, श्रीलंकन 430.12, बांग्लादेशी टके 165.94 एंड अफगान अफगानी 86.51।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of, what is the rate? 111.49 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भाई आईपीएल के मुकाबले दिलचस्प दौर में पहुंच चुके हैं। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कितने विकेट से हराया, 6 विकेट से हराया 5 गेंदों के रहते। भाई दोनों टीमों ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था लेकिन विनर्स वर RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज कौन खेल रहे हैं, किसके खिलाफ खेल रहे हैं भाई? पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी। दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होगा। स्कोर के आंकड़े यहां होंगे लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है Laika Gold.
1: The wait is now over. The king of melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Laika Radio.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Two businesses.
12: Same town.
11: Same service.
12: One appears on page one of Google.
11: The other doesn't.
12: Guess which one gets the customer?
11: The truth is brutal.
12: The first page of Google gets the business.
11: Everyone else gets what's left.
12: So here's the real question.
11: When your customers search for what you sell, do they find you?
12: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
7: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और इसका आरंभ भाई हम चिंतन से किया करते हैं, दूसरे दौर का याद दिला दूं। माय नेम इज रवि शर्मा, मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। और इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं, मैं तैयार हूं चिंतन परोसने के लिए। थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

आज की चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर अनुराधा पांडे का भेजा आलेख। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा मीठा सा निमंत्रण साथ भेजा है। कहती है कि भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा आज 14 मई को हम एक हिंदी महिला कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप उसमें इनवाइटेड हैं। तो मैंने कहा, मैडम ये हिंदी महिला कवि सम्मेलन है, इसमें मेरा क्या काम? महिलाओं के लिए है। तो कहती हैं कि महिला कवि सम्मेलन है, महिला श्रोता सम्मेलन नहीं है। श्रोता सब आ सकते हैं, पर आप कभी कभी श्रोता बनकर भी आया करें। हमेशा मंच पर ही माइक के सामने हो ये जरूरी नहीं है। थैंक यू अनुराधा जी। और फिर कहती है कि महिलाओं का जिक्र हुआ है तो ये बता दूं आपको कि कल आपके प्रोग्राम में एक गाना सुना, नारी होके पिए विस्की और पिए सिगरेट बेबी। क्यों? नारी होके या पुरुष होकर के सिगरेट पिए दारू पिए उन्हें रोकते नहीं है। बात तो सही है, लेकिन मैडम बात यह है कि गाने में ये बोल शायद मनोज कुमार साहब ने इसलिए शामिल किए कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि नारी कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे समाज में दूसरों को बुराई की ओर बढ़ने के लिए जो है वो क्या कहें, एनकरेजमेंट मिले। नारी तो कोमलता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ओहो आप इसे चमचागिरी कहें कुछ भी कहें, लेकिन साहब मानना तो पड़ेगा कि हर फील्ड में, और वो याद दिला रही कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, वाक्य हैं कि जहाँ नारी ने अपनी श्रेष्ठता, पुरुषों पर भी श्रेष्ठता साबित की है। अब देखिए भाई, मैं अपने इलाके की बात करूँ तो हमारे यहाँ से मानुषी छिल्लर जो है वो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। हरियाणा की हैं ये लड़की, और ये क्या कहते हैं ब्यूटी क्वीन, वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना मिस वर्ल्ड का, वो इन्होंने जीता। और हमारे ही शहर से मेडिकल कॉलेज से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके भी विश्व स्तर पर अपने सौंदर्य का सिक्का जमवाया। और बहनों भाइयों, वैसे तो एक से बढ़ के एक नाम ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं। महिलाओं की ओर से एक प्रसंग उन्होंने लिख भेजा है डॉक्टर साहब ने, कि आज से लगभग 175 बरस पहले जब समाज में लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं माना जाता था, तब एक महिला सावित्री बाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने का एक साहसिक काम शुरू किया। लड़कियों को घर में ही रखा जाए, उन्हें सिलाई कढ़ाई रोटी खाना बनाना बस यही सिखाया जाए, वो पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बन सकती हैं, मिस वर्ल्ड भी बन सकती हैं, वो पायलट भी बन सकती हैं, वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। लेकिन ये साहब 175 बरस पहले की बात है। ऐसे में सावित्री बाई फुले एक स्कूल तक पैदल जाती हैं और वहां जाकर के छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू कर रही थी। बच्चियां भी आ जाती थी, लेकिन रास्ते में कई लोग उनका विरोध करते कि लड़कियों को आप घर से निकाल रही हैं, पढ़ने लिखाने लिखने के लिए जो है प्रेरित कर रही हैं, हम आपको उधर नहीं जाने देंगे। तो साहब उन पर पत्थर फेंके जाते, कीचड़ फेंका जाता, मिट्टी डाली जाती है और गालियां बरसाई जाती, पर सावित्री बाई ने हार नहीं मानी। अब देखिए साहब, वो क्या करती थी कि बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके चलती थी। अब रास्ते भर में कीचड़ मिट्टी फेंकने से जब उनकी साड़ी खराब हो जाती तो स्कूल में पहुंचते ही पहले वो अपनी साड़ी बदलती, और उसके बाद आसपास के पड़ोसी से बच्चों को इकट्ठा करती, बच्चियों को, लड़कियों को, ये लड़कियों की एजुकेशन का मामला था, और उन्हें पढ़ाती। जितना विरोध बढ़ा उनका, जितनी उनके खिलाफ आवाजें उठी, उतना ही उनका हौसला और मजबूत हुआ। पूरे उत्साह से उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी। स्कूल में लड़कियां अब तालीम हासिल कर रही थी, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करने लगे, क्योंकि सावित्री बाई का कहना था कि अगर लड़कियां शिक्षित बनेंगी तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के माहौल को शिक्षित बनाएंगी।
मुश्किल और महान कार्यों का रास्ता रोका नहीं जा सकता। शिक्षा नारी की सबसे बड़ी ताकत है। साहस और धीरज से समाज की सोच बदली जा सकती है, क्योंकि एक मजबूत औरत पूरे समाज को मजबूती दे सकती है, नई दिशा दे सकती है। नारी केवल शक्ति का सिंबल नहीं है, वो संस्कार, साहस और परिवर्तन की, तब्दीली की नींव है, आधारशिला है, उससे ही तब्दीली शुरू होती है। तो डॉक्टर अनुराधा पांडे जी, आपका संदेश सर आंखों पर। और बहनों भाइयों, आज हर फील्ड में नारी को आगे बढ़ते देख करके अब पुरुष भी कहने लगे हैं, क्या कहने लगे हैं,

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आप सुन रहे थे चिंतन। आज के चिंतन में शामिल आलेख डॉक्टर अनुराधा पांडे ने भारतीय उच्चायोग से भिजवाया। आप हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं और आज आयोजन कर रही हैं हिंदी महिला कवि सम्मेलन का। आपके इस सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4:30 बजे से भाई कवियत्रियों की रचनाएं जो हैं वहां गूंजेंगी। वह अगर भाई मंच पर बोलने का मौका दे तो मैं भी साड़ी पहन के आ जाऊं। लेकिन आई डू एक्सेप्ट दैट महिलाएं हर फील्ड में, आज साहित्य में, संगीत में और खेल के मैदान में और सीमा पर या राजनीति में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के आयोजन के लिए और भाई सभी महिलाओं को भी जो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। रश्मि मिश्रा जी, आपको भी बधाई। आप बहुत सारी महिलाओं को साथ लेकर के कई फील्ड्स में जो कार्य कर रही हैं। भाई चिंतन में शामिल गीत याद है कौन सी फिल्म का था? नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, स्वयंवर था फिल्म का नाम, और उसमें मेरा ख्याल है विद्या सिन्हा थी शायद और संजीव कुमार। भाई पुरानी फिल्मों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है रवि शर्मा जी की, क्योंकि रवि शर्मा तो आजकल का नौजवान है। चलिए साहब, चिंतन को गंभीरता से लीजिएगा, बाकी बातें हंसी में भले ही उड़ा लें, चिंतन को सीरियसली लिया करें। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK। फिर याद दिला रहे हैं भाई, अगर आप अपनों को पैसे भिजवा रहे हैं तो नोट कीजिए आज का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आर गिविंग फॉर £1 हाउ मच? 129.05 रुपीस, 129 रुपए और 5 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line. किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
7: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
8: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
9: Sade 10th Guru Govind Singh Ji Maharaj da pavitr janam sthan Takht Shri Hariminder Ji Patna Sahib de live darshan देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
10: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लिखाई रह्यो छे।
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
13: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
14: Travel Hub.
13: At all protected.
12: Leica.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS at Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on
16: 0208-900-2323. जो रेगुलर कंट्रीब्यूटर है देशराज बैसन साहब, वो कहते हैं कि आज गुजरे ज़माने की अभिनेत्री वहीदा रहमान जी की 88वीं जयंती है। हाँ जी, उनका जन्म 14 मई को हुआ था, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि 3 फरवरी भी उनका जन्मदिन होता है, भाई किसी और नज़रिए से। लेकिन वहीदा जी एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, आप जानते हैं, और आज भी वो ग्रेस उनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और आप वो फिल्में भूले नहीं होंगे, हालांकि उन्होंने शुरुआत तो एक तेलुगू यानी तमिलनाडु के, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका तो एक तेलुगु भाषी फिल्म से की थी, लेकिन उसके बाद में राम और श्याम, गाइड, प्यासा, पत्थर की सनम और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने। मुझे तो उनकी फिल्म बहुत पसंद थी, वह ब्लैक एंड वाइट थी, शायद तीसरी कसम।

0: जुगनू, व्हाट अ सॉन्ग दैट वाज। एंड भाई ये गीत कौन गा रही थी जुगनू फिल्म में? लता मंगेशकर। गीत सुनाने के बाद भाई बहुत सारे फैंस हैं लता जी के हमारे श्रोताओं में, और भाई और गायक कलाकारों के भी, आशा जी के, कविता कृष्णमूर्ति और सब, पुरुषों में रफी साहब, मुकेश और किशोर कुमार के श्रोताओं से हमें कुछ कहना है। कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय भाई, ये कलाकार इकट्ठे हो रहे हैं और किशोर कुमार को, किशोरदा को श्रद्धांजलि स्वरूप जबरदस्त प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं विद 515 बैंड। इट टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल। नोट कर लीजिए 19 जून को ये कार्यक्रम हो रहा है प्रिंस रीजेंट होटल में, जो चिगवल में है। एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका गोल्ड रेडियो।
1: लाइका गोल्ड।
2: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें जिंदगी में प्यार नहीं मिला, और कुछ लोगों की शिकायत यह है कि उन्हें पूरा भंडार मिला। अब समझ नहीं आ रहा है कि किससे करें किससे ना करें,
1: किस किस किस किसको किसको।

0: मामा भी आइए भी है, वो भी है, तू भी है, इतनी सारी हो गई है तो मेरा एड्रेस दे दे।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Like a extra podcast update.
4: और आपको बता दें कि भाई एक के बाद एक नए एपिसोड्स आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के। एपिसोड 16 अब आ चुका है, टाइटल है इंडिया वीक शोकेस और भारतीय सप्ताह का शोकेस। भाई होस्टेड बाय अनुज राडिया एंड टॉकिंग पॉइंट्स लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम May 26 to May 31st। पिछले एपिसोड्स भी वहाँ उपलब्ध हैं, जैसे वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, होम स्कूलिंग डिबेट, विल्स एंड प्रोबेट। भाई ये जो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट हैं ये उपलब्ध हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms पर आप देख सकते हैं।
1: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Maria wasn't mastering the art of macaron in Paris by accident. She booked a baking class on Get Your Guide. Fate didn't have the Brooks sipping matcha with a real tea master in Tokyo. They booked that on Get Your Guide too. And luck didn't have John learning the difference between bow and stern on a Majorcan boat cruise. You guessed it, Get Your Guide. The best parts of travel don't just happen. You make them happen with Get Your Guide. Book forward to it.
3: Ye hai.
6: Like a gold.
3: Like a gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
13: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simsy before we left London.
13: Simsy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
16: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
17: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
16: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
17: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
18: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल,
19: शु लागे छे हुं या साचे वेडिंग प्लान करवावी छु,
18: वाकी चुकी लव स्टोरी। स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मे।
19: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे।
20: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
21: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
22: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
23: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: वही बेसकूनी, वही बेकसी है, वही मैं, वही फिर मेरी बेबसी है। मुझे दुख की शिद्दत ने पत्थर किया है, ना आंखों में आंसू ना लब पे हंसी है। कोई फर्क ही कब मेरे आज कल में, वही जिंदगी थी वही जिंदगी है, वही जिंदगी थी वही जिंदगी है। मैं हूँ और मेरी तन्हाई।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: दर्द भरे गीत पसंद आ रहे हैं हमारे श्रोताओं को, कहते हैं टपकाते रहो, सुनवाते रहो, परोसते रहो। लीजिए साहब, हाजिर है एक और ऐसा ही गीत। बार बार तो है क्या समझाए पायल की झनकार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। दिल की मुसीबत ये है कि दिल नहीं लगता।

0: बेसहारों का सहारा है ये दर्द, कितना प्यारा है, कितना मधुर है। लता मंगेशकर की आवाज, लागे ना मोरा जिया। भाई घूंघट फिल्म से हमने आपको ये गीत सुनवाया, और याद होगा आपको कि भाई घूंघट फिल्म के संगीतकार थे वन एंड ओनली रवि साहब। और मजे की बात है कि फिल्म के हीरो का नाम भी रवि था। प्रदीप कुमार, बीना राय की फिल्म, आशा पारेख, भारत भूषण, रहमान, मीनू मुमताज, ऐसे ऐसे कलाकार थे। पर मुझे कैसे पता है भाई, कहीं पढ़ लिया है, मुझे कुछ नहीं पता। जब भी किसी पुरानी फिल्म का जिक्र करता हूं, आप मेरी उम्र जो है वो काउंट करने लगते हैं। इतनी पुरानी फिल्मों के बारे में जानकारी रखते हैं, जरूर कोई बुजुर्ग साहब हैं ये। बहुत पुरानी नहीं है, 1960 की फिल्म है, 1960 की, और रामानंद सागर थी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर। घूंघट, व्हाट अ सॉन्ग दिस वाज। भाई और भी गीत इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू द बाउंस रेट बाय SBI UK।
1: SBI UK मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK। रिमाइंडिंग, पैसे भिजवाने हैं तो भाई रेट अच्छा चल रहा है, नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 129.05 इंडियन रुपीस, 129.05 का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: लाइका गोल्ड, 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी, लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गेरंटी। फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मां रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हसबंड जी।
3: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto twin city centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
4: Call 01923 883100. At all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Prem, past and future vachche atkailu ek deal.
11: Tamne shu lage chhe? Hun ya sachche wedding plan karvavi chhu.
10: Waaki chuki love story.
12: Pagal ho ram to aayo,
10: स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मे।
11: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे।
12: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भानु भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है क्या? इस सप्ताह महेंद्र कपूर जी के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाई जरा ये सुनिए, ये क्या कह रहे हैं शर्मा जी के बारे में?
18: मैं जब भी लंदन आता हूँ रवि शर्मा जी के प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ। वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करते, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, उनकी स्माइल भी जेन्युइन है। जय माता दी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, मेरे भाई रवि शर्मा जी को और मेरे जितने भाई बंद, मेरे दोस्त यार लंदन के हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। जय माता दी।
0: जय माता दी, कितने अच्छे और सच्चे इंसान है भाई गोविंदा जी, एकदम सच बोलते हैं जो भी बोलते हैं। अब साहब, महेंद्र कपूर हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक, गोविंदा नहीं, लेकिन हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं ये गोविंदा जी के पूजनीय पिताजी पर पिक्चराइज है। पिताजी? हाँ, अरुण आहूजा वही इस गीत में नजर आते हैं गाते हुए। हालांकि जज्बात किसी और के हैं, हालात किसी और के हैं, लेकिन उनके होठों पर ये गीत सजा है। कौन सा गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में? भाई बताया कि मनोज कुमार की फीलिंग्स हैं, बाला सिन्हा की जो है वो दिल की बातें हैं, और गा कौन रहे हैं? महेंद्र कपूर। पिक्चराइज किन पर हुआ है? अरुण आहूजा पर। अरुण आहूजा गोविंदा जी के पूजनीय पिताश्री, नाव चलाते हुए गाते हुए वही नजर आते हैं इस गीत में। सुनिए और कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच नैना शाह जी।

0: खो गया है मेरा प्यार, बरसों पहले खो गया था भाई, जब फिल्म आई थी, क्या नाम था, हरियाली और रास्ता। देखिए साहब, बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी ना हो कि गोविंदा के पूजनीय पिता श्री भी बड़े पर्दे पर भाई भूमिकाएं निभा चुके हैं। तो अरुण आहूजा पर पिक्चराइज था ये गीत, लेकिन फिल्म के हीरो हीरोइन के जज्बात वो व्यक्त कर रहे थे नाव चलाते हुए। राइट, थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से भाई, नैना शाह ने सुझाया और हमने सुनवाया। और अब आगे बढ़ते हुए गीत आ रहा है कौन सा, मुकेश जी की आवाज़ में, मुकेश जी की आवाज़ में है ये गीत, आप पहचानिए भाई। आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं आवाज़ों को पहचानने में, पर ये गीत सुनवा कौन रहे हैं?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Oh, what a song. लेकिन भाई गीत थोड़ा छोटा नहीं था, मैंने नहीं रोका, लेकिन गीत यही समाप्त हो गया, ऐसा लगा जैसे जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पूरा भी सुनाएंगे। लेकिन ये एक मैसेज आया है एजाज भाई का, चेशम से, कहते हैं कि जो वो गोविंदा के पूज्य पिताश्री नहीं है तो कौन है? बोले एक्टर BM व्यास लगते हैं मुझे तो। भाई हो सकता है, या आप कहते हैं मेरे ख्याल में, देखो ये उनकी क्या कहेंगे पोलाइटनेस है। और भाई वो नैना शाह के ख्याल में वो गोविंदा जी के पिताजी हैं, और भाई मेरे ख्याल में तो आप दोनों ही सही हैं, मैं किसी क्योंकि मेरे दोनों ही बहुत प्यारे लिसनर हैं आप।

0: और बहुत ही न्यारे रानी स्लव में आप सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपको गीत बहुत पसंद आया। और भाई दिनेश पोपट जी, आप तो मुकेश जी के दीवाने हैं। जितने भी गाने हैं जो मुकेश जी ने गाए हैं वो हमने आपके लिए बजाए हैं, आप स्वीकार कीजिए। बाय द वे इनवॉइस किसके नाम की बनाऊं? विजय मॉरिशस में कहते हैं नमस्ते पंडित जी, दोपहर की राम राम। और हमें वो दिल्ली वाली कह रही है गुड मॉर्निंग। अब वो दिल्ली वाली आपके यहाँ तो शाम होने वाली है, मिसेस कालड़ा। थैंक यू वेरी मच कृष्णा कालड़ा जी, हमें दिल्ली में सुनती हैं और बताती हैं कि सुन रही हूँ। ओके मानसी, आप कहाँ सुन रही हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। और गुरुदेव गांजा, नरेंद्र पांचाल टोरंटो में हमें भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। उल्लास जी, थैंक यू वेरी मच उल्लास, सुनती रहिएगा। हिना देशराज बैसन साहब, नैना प्रतिभा, प्रतिभा कहती हैं कि वो रश्मि मिश्रा का आपने नाम लिया, वो तो इंडिया चले गए। अरे वो कहीं भी हो भाई, वो सर्वव्यापक हैं। ऐसा लगता है जैसे आसपास ही हैं। और नारी शक्ति का परिचायक है उनका व्यक्तित्व। पम्मी शाह स्लो में सुन रहे हैं, थैंक यू सहर जी, अर्जुन जी, फरीदा गुलाम अली, थैंक यू जगदीश बुशी में, सुनीता शर्मा, रागनी और वत्सला जी, क्या बात है। आपने चिंतन सुना, नारी कुछ ऐसे आगे निकल रही है भाई, सचमुच निकल रही है। आप कहती है कि जय माँ जगत जननी नारीश्वर, प्रभु नारीश्वर यानी भगवान भी शक्ति के साथ ही शक्तिमान बनती है और वो शक्ति नारी है। अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं, आप भी तारीफ कर रहे हैं महिलाओं की, भाई आपको किसका डर है? कहते हमारी तो खैर बात हो रही है क्योंकि पत्नी घर से काम करती है तो सुनती है वो, तो हमें तो भाई थोड़ा नहीं, ऐसी बात नहीं, डरता नहीं हूँ मैं, नहीं नहीं मैं किसी, मैं छोड़िए साहब क्या रखा है सच्ची बातों में, क्या रखा है छोड़ते हैं। हंसा बोरा, नीला चौधरी, अरुणा भूपेंद्र पटेल, रंजन, कृष्णा कालड़ा, राजेंद्र राज, राजेंद्र राज जी थैंक यू वेरी मच, लतीफे भेज रहे हैं आप। कहते हैं कि दूल्हा विदाई के समय बड़ा घबरा गया जब उसकी सास ने कहा, देखो विदाई हो रही है, दुल्हन गाड़ी में बैठ गई है और दूल्हे ने अपनी सास के पांव छुए, तो सास ने क्या कहा, ऐसा क्या कह दिया कि दूल्हा बहुत घबरा गया, डर गया? सास ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, अपना बचाव करना और हो सके तो हमें माफ कर देना। थैंक यू राजेंद्र राज जी। भरत गंगाराम और सलमा मेडस्टोन में लगातार सुनती हैं हमें। हरीश रोडा जी हमारे डेडिकेटेड लिसनर, जय श्री, आपको कैसे भूल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपने को किसी और गीत का जिक्र किया है कि वो गीत डिंपल जी पर पिक्चराइज हुआ था, पर कौन सा गीत था भाई वो नहीं लिखा आपने। और नीलम, थैंक यू वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड मॉर्निंग में मैसेज भेजता था, गुड आफ्टरनून में रिस्पॉन्स मिल रहा है। फारूक मोहम्मद, थैंक यू एज ऑलवेज यू आर विद मी। एंड प्रकाश नॉर्थोल्ड में, निर्मला जी, हेतल सोलंकी, अलका, ये जो अलका अलका सुरूर है। जहीर खान कराची में सुनते हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। भाई आप सबको धन्यवाद दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं और याद दिलाते हैं आपको कि हम यानी लाइका रेडियो नेटवर्क जो है वो एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं बहुत सारे कार्यक्रमों के जो आ रहे हैं, उनमें एक तो शामिल है भाई प्रोग्राम जो मेला 2026, लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबे पार्क। और इसके अलावा ब्रैडफोर्ड सिटी मेला 1st and 2nd of August से भाई ये सिटी पार्क में है, तो वहाँ भी हम पार्टनर हैं और हम पार्टनर हैं रागासंस के साथ भी। भाई लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड ए पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन, डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: रूठ कर जब वो हमसे दूर जाने लगे, हम भाई वो सारी अकड़ छोड़कर, नखरों की दीवार तोड़कर जी जान से उनको मनाने लगे। और जब वो नहीं माने तो हम उन्हें नए नए डर दिखाने लगे। जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे हमारे निधन की खबर आएगी। ओ मेरी

0: travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: रामकृष्ण हरि यूके फील द पावर ऑफ महाराष्ट्र. दिस 6th जून एक्सपीरियंस वाद्य महोत्सव 2026 लाइव एट रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशा परंपरा संस्कृति और फुल ऑन जोश का मेगा सेलिब्रेशन. भारत से यूके तक एक ही रिदम एक ही प्राइड. टिकट्स लाइव नाउ एट svrtuk.org. लाइका लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट. यूज कोड LAIKA10. वाद्य महोत्सव 2026 फील द बीट लिव द लेगेसी.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: और लीजिए साहब, नोट कीजिए रेट्स इस समय के LemFi द्वारा स्पॉन्सर्ड ये रेट्स। एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में मिल रहे हैं 129.39 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 376.44, श्रीलंकन रुपए 439.52, बांग्लादेशी टकाज 165.89 और अफगानी 86.47।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: And the gold is sold at the rate of 111.49 pounds per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
3: और अब बात फिर से इश्क की करें। इश्क में मेरे जाने किस किस ने की रुसवाई, किस किस ने क्या, लोगों ने की, कुछ तुमने बदनाम किया और कुछ आग लगाई लोगों ने। क्या हुआ अंकल?

0: उड़ता फिरूं बादलों की तरह, ठंडी आहें भरूं पागलों की तरह। ऐसा क्या देख लिया भाई तुमने जो तुम पागल हो उठे हो, ऐसे परेशान हो गए?
1: पागलों की तरह रो रहे हो,
0: पता नहीं क्या देख लिया।
1: क्यों पागलों की तरह रो रहे हो?
0: मैडम आप क्या कर रही हैं इस समय यहाँ?
1: मैडम बाली जी जो एब्सेंट है तो फिर मैं उनकी जगह इस हॉट सीट पर बैठूंगी।
0: ओके तो कुछ ज्यादा ही होटल बता देता हूँ आपको। सरिता अग्रवाल।
1: ओए अग्रवाल होंगे आप
0: तो? आप क्या हैं?
1: शर्मा जी
0: क्या?
1: मैं सबरवाल।
0: ओके ओके
1: बहुत अच्छा, सबर करती हूं।
0: मैं सरिता अग्रवाल ऐसे कहता हूँ जैसे मैं उनको कहता हूँ अनीता नासिर। सरिता सबरवाल विल बी योर होस्ट आफ्टर 1 o'clock न्यूज, क्योंकि बाली जी नहीं और क्या कुछ समेट के लाई हैं, बटोर के लाई हैं।
1: वहीदा रहमान जी का बर्थडे मनाएंगे।
0: ओके
1: अमरनाथ जी की डेथ एनिवर्सरी पे उन्हें याद करेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सारी सामग्री
1: की बातें,
0: इधर उधर की बातें और बहुत सारे गीत होंगी, मुलाकातें। सरिता सबरवाल आपकी मेजबान होंगी खबरों के बाद। रवि शर्मा प्रोग्राम समेट रहा है, पर जाते जाते क्रिकेट की बात तो करूंगा भाई।
2: ये है लाइका गोल्ड
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय Remitly। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद Remitly's ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। Remitly प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट।
0: दोपहर बाद 3 बजे भाई शुरू होगा मैच आईपीएल 2026 का। आज का मुकाबला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। दिलचस्प होगा ये भाई मैच, ये भिड़ंत, और स्कोर के आंकड़े हमारे यहाँ से सुनते रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Like a Gold.
4: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
6: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: शाहरुख तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
0: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टर रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
8: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश।

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड, तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Oh, Julelal Kalandar, mast mast da, mast Kalandar, mast.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 02203-773-633 now. APTA bonded.
7: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
9: एंड दैट्स इट भरो, ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम। अब जाते जाते ये वादा लेना है कि गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और स्टूडियो में हमें बुलाते रहिए, कभी अलविदा ना कहना।

0: गुड आफ्टरनून, दिस इज सरिता सबरवाल सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट जी, और मुझसे पहले थे यहाँ रवि शर्मा जी। और अब प्रोग्राम का आगाज हो चुका है बाली जी के शो का, एंड पहला गीत आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, आशा जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ें, एंड दूसरा गीत था आशा जी की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म अगर तुम ना होते। पहला गीत 1995 की फिल्म थी, तो दूसरा गीत मैंने चुना था 1983 की फिल्म से। उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए और इन्जॉय किए। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में मिले जुले गीत होंगे, हो सकता है कि इन दोनों गीतों में जैसे ज़रा वर्ड आ गया, तो हो सकता है कि बाकी के गीतों में भी आपको यही कुछ सुनने को मिल जाए। लेकिन नेक्स्ट आवर में एंड थर्ड आवर में भी हम याद करेंगे, सबसे पहले तो वहीदा रहमान जी बर्थडे मना रही हैं, तो उनके बर्थडे की सेलिब्रेशंस होंगी, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड देन के अमरनाथ एक डायरेक्टर हुए हैं जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उनको भी याद किया जाएगा उनकी फिल्मों के गीतों के ज़रिए। सो मेरा साथ इसी तरह से देते रहिए। पर ज़रा पूछ लूँ आपसे, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक तो है ना? जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जियो शान से, मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए, गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आप ही के लिए। सो जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है अपने मैसेजेस के ज़रिए, मुझे एहसास दिला रहे हैं कि आप मेरे आसपास मेरे साथ साथ हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो अभी क्वाइटली प्रोग्राम के दोनों गीतों को तो इन्जॉय किया, ज़रा देखना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो कोई बात नहीं, आगे भी अच्छा ही होगा, अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन सरिता करती रहेगी। अब जरा ये मैसेज भी आपके साथ शेयर कर लूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए कहीं भी पैसे इंडिया में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। लो जी, अब तो एक पाउंड के बदले 129 रुपीस एंड 5 पैसा दे रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितना बड़ा अमाउंट होगा रेट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो आज ही इनसे संपर्क कीजिए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026. Live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ. 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: Watford mit dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
11: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
10: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
11: Her bite may lajawab flavors or vibe bilkul premium.
10: Friends, family ya special night out, make it memorable.
11: Godfather and Company. Taste the legacy. Live the moment.
10: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
11: Book your table today.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Ek badhiya, kadak. गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
16: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी कभी भी।
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो leicagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a beautiful song. Madan Mohan ji ka sangeet film ka naam tha Haqeeqat. 1964 mein aayi thi ye film. Aur aapko ye gaana bahut acha laga, ye jaankar bahut acha laga. Aapki messages mujhe barabar mil rahe hain. Thank you ever so much. Aur thank मैं करना चाहती हूँ अपने सभी सुनने वालों का. क्यों? क्योंकि आज ही नई हमारी फिगर्स आई हैं, रेजार फिगर्स, और लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन. लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रिमेन्ड कंसिस्टेंट एंड विद लाइका गोल्ड नाउ बीइंग लिसन टू लॉन्गर देन एनी अदर कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन. तो इसके लिए ये तालियां आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. ये सब आपकी बदौलत है. जी हाँ, अगर आप हमें अपने कान उधार नहीं देंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. सो ये नई जो रजा डेटा आया है लेटेस्ट, उसके मुताबिक मैंने ये आपको बताया है और आपके हम शुक्रगुजार हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. इसी तरह से सुनते रहिए और साथ देते रहिएगा.
0: ये है Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया है कौन कौन से गीत आपको पसंद आ रहे हैं और उनमें क्या क्या है.

0: हेमंता की आवाज और उन्हीं का संगीत फ्रॉम द फिल्म 20 साल बाद.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 129.32, Pakistani rupees 376.41, Sri Lankan rupee 439.45, Bangladeshi taka 165.87, and Afghani is 83.73.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Right, Gold ka rate hai is waqt market mein 112 pounds and 12 pence ka 1 gram sona.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और अब आपकी सेवा में मैं पेश करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा. एंड ये गाना भी बहुत दिनों बाद हम सुन रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे. चलिए बढ़ते हैं गीत की तरफ. मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ें.
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
0: जन्म जन्म के फेरे, ये था फिल्म का नाम, 1957 की फिल्म. रजिंद्र कालरा जी, एक बहुत ही पुराने से गीत की आपने फरमाइश की जो 1949 की फिल्म है जल तरंग, उसमें भी एक गीत है जिसमें ज़रा वर्ड आता है, लेकिन सैंडी शाह है ना, वो यहीं है स्टूडियो के बाहर ही, तो वो मुझे कहेंगे कि ये कोई तुम्हारा कौन सा प्रोग्राम है, गोल्डन नाइट नहीं, विंटेज गोल्ड प्रोग्राम चल रहा है या बाली जी के प्रोग्राम को आप पेश कर रही है. तो ओके, I'll definitely see, I'll just check and if I am able to play that song. पर ये गाना मैं आपके नाम करती हूँ.

0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: Well, आप सभी जान रहे हैं कि IPL के आजकल मैचेस चल रहे हैं. आज का मैच 3 बजे शुरू होने वाला है पंजाब किंग्स के बीच में और उनके साथ होंगे मुंबई इंडियंस. तो हमारे साथ देते रहिए, अपडेट आपको करते रहेंगे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
4: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
3: Call today on 01923 883 100
4: or go to skylordcruiseandholidays.com.
3: Book with confidence.
4: We're atoll protected.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: कुल का दीपक समझे थे, फुलझड़ी निकला.
7: 15 मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका. कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15 मई से सिनेमाज में.
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
9: दिशा राइस इज अवेलेबल इन ऑल एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड एंड सोनी कैश एंड कैरी, ऑल सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सिरा कैश एंड कैरी, साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स, रेडिंग एंड स्लाव.
8: दिशा बासमती राइस.
10: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
11: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
10: So where do we find something like that now?
11: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
12: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
13: No more worries for me or you.
14: Southall Travel, at all protected.
15: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
16: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
15: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
16: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
15: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
16: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
15: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
16: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
18: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है.
19: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लाई
18: રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
19: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર,
18: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
19: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
18: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
19: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
18: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
20: મિનાર જ્વેલર્સ, અગર આપ સોના બેચના ચાહતે હૈ યા વેલ્યુએશન કરવાના ચાહતે હૈ તો ઉસકી સહી કીમત કે લિયે તશરીફ લે જાઈએ મિનાર જ્વેલર્સ પર, 181 અપર ટુટિંગ રોડ, યા વિઝિટ કીજીએ minarjewelers.com. કોલ 02087677627.
0: અક્રોસ લંડન, This is Bally Brambat on Like a Gold.

0: गीतों की ये गीत कहाँ आजकल सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथी भी कह रहे हैं, जस चशम में सुन रहे हैं प्रोग्राम, मानसी जी, तोची जी, रोहित जी, विजय गुजरोई सटन में सुन रहे हैं, सलमा मेडस्टोन में, एंड मोहम्मद यूनस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलाड मुंबई में सुन रहे हैं आप प्रोग्राम, एंड साइदा मुगल सलाव में, दिनेश पोपट जी, रजिंदर सिंह कालरा जी, जगदीशीन बुशी एंड मिसिस पाकी चियांग, आपने भी लिखा है बड़ा प्यारा सा मैसेज, थैंक यू सो मच। महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, उल्लास इन टोरंटो, विजय जी आपका दूसरा मैसेज भी मिल गया, हंसा वोरा जी, मीना लखानी जी, सहर जी, पमी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। राइट, टॉकिंग अबाउट वहीदा रहमान, वहीदा रहमान की डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर हम विकिपीडिया देखते हैं, गूगल करते हैं, तो उनका आता है 3 February 1938, लेकिन जिस सोर्सेज से मैंने या बाली जी ने देखा है, तो हमारे मुताबिक आज है उनका बर्थडे। सो एनीवे, आज है या नहीं है, पर हम आज उनका बर्थडे मनाएंगे, और ये गीत हमें पहुंचाएगा न्यूज तक।
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने एंड पहला गीत लम्हे फिल्म का था, 1991 में आई थी लता जी एंड हरिहरन की आवाज़ें थी उस गीत में शामिल एंड शिवहरी का संगीत एंड चांदनी का गीत आपने सुना, 1989 की फिल्म थी एंड आशा भोसले एंड विनोद राठौर की आवाज़ें आपने सुनी। वेल, आप कहेंगे कि वहीदा रहमान का बर्थ है, ये गाने तो वहीदा रहमान पर पिक्चराइज नहीं हुए थे, पर वहीदा रहमान ने इन फिल्मों में काम किया था, डू यू नो। वेल, पहला गीत था लम्हे का और लम्हे के लिए भी, और दूसरा गीत फिल्म चांदनी से और चांदनी के लिए भी। इसके अलावा 1976 की फिल्म कभी कभी एंड 1982 की फिल्म नमकीन, इन चारों फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किसके नाम गया था, वहीदा जी के नाम ही। सो वहीदा जी के बारे में बहुत सी जानकारी आप रखते होंगे, बहुत एविड फैन भी होंगे आप उनके, और उनके बारे में जो जो जानते हैं मुझसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम गूगल करते हैं तो आता है वहीदा रहमान जी का बर्थडे 3 फरवरी 1938 में हुआ था, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उनका बर्थडे आज ही के दिन 1936 में हुआ था। सो कोई बात नहीं, अगर बर्थडे आज नहीं भी है तो वहीदा जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। एंड शी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस ऑफ हिंदी सिनेमा। शी हैज़ अपीयर्ड इन मोर देन 90 फीचर फिल्म्स इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 5 decades एंड हर she received a National Film Award, 3 Filmfare Awards. She was honored with India's Civilian Award, Padma Shri in 1972 and the Padma Bhushan in 2011. And in 2021, she was honored with the Dada Saheb Phalke Awards. इंडियाज़ हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सो बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनके काम को बहुत सराहा भी गया। अगर आपकी कोई ख़ास फेवरेट फिल्म थी वहीदा जी की और उस फिल्म का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। 1959 में उन्होंने कागज़ के फूल में काम किया था, देन प्यासा में 57 में, चौदहवीं का चांद इन 1960, साहेब बीबी और गुलाम इन 1962, गाइड वॉज वाव आउटस्टैंडिंग फिल्म फॉर विच शी वन हर फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। सो इन फिल्मों के जिनके नाम मैंने लिए, अगर इनमें से कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। राम और श्याम, नील कमल, खामोशी 1969, दैट वॉज अ वेरी नाइस फिल्म एज वेल, रेशमा और शेरा इन 1971, और इसके लिए शी वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और भी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले जरा ये हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं कहीं भी इंडिया में तो आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 129 rupees and 5 paisa for 1 British sterling pound and you to transfer the money, it's very easy. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम आप तक कौन पहुंचाते हैं? जी हाँ, जैमिन फूड्स वाले।
2: Jaimin Foods sponsors Gold Afternoons from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious, everything for everyone.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more,

0: अभी भी मेरी आंखों के सामने वही सीन चल रहा है, नीतू सिंह जब जाती हैं वहीदा रहमान के घर मिलने के लिए, तो वहाँ पर ये गाना पिक्चराइज होता है और क्योंकि उनकी डॉटर होती है एंड शी डिडंट नो कि वो उनकी डॉटर है। बहुत प्यारा गीत था और मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद भी किया। वहीदा रहमान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उनकी फिल्मों के कुछ एक गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप पसंद कर रहे हैं। राइट, 16वां साल में भी उन्होंने काम किया था इन 1958, उससे पहले भी कुछ एक फिल्मों में उन्होंने, वेल तमिल फिल्मों से उन्होंने शुरू किया था, तेलुगू एंड तेलुगू फिल्म से इन 1955, और उसके बाद अर्ली उनकी फिल्म्स में फिल्म थी 16वां साल, देन सुरेश कोहली की द हिंदू एंड 16वां साल फिल्म थी, एंड वहीदा रहमान परफॉर्म कॉट आई ऑफ हिंदी फिल्म मेकर गुरुदत्त एंड होम शी कंसिडर्ड हर मेंटोर, एंड गुरुदत्त ब्रॉट हर टू बॉम्बे और वहाँ पर उन्होंने उनकी बहुत सी फिल्मों में काम किया, एंड शी एक्टेड एज कामिनी इन द क्राइम थ्रिलर CID इन 1956 बिकॉज ऑफ द ट्रेंड सेट ऑफ देन पॉपुलर एक्ट्रेसेस सच एज मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी थी उस वक्त सीन में। तो वहीदा रहमान वॉज आस्क्ड टू यूज़ अ स्टेज नेम something different, लेकिन she refused and she said no, this is my name and I will use this name. और प्यासा में फिर 1957 में उन्होंने काम किया था, गुरुदत्त के साथ उनकी जोड़ी बहुत बहुत पसंद की जाती थी। she continued working with गुरुदत्त which included 12 o'clock film 1958 की, कागज़ के फूल इन 1959, चौदहवीं का चांद इन 1960, एंड सभी फिल्मों के लिए उन्हें बहुत प्रेज मिली थी। एंड वहीदा रहमान एंड गुरुदत्त ने लास्ट जिस फिल्म में काम की थी वो थी साहेब बीबी और गुलाम। अब मैं आपको चॉइस देने जा रही हूँ, चलिए मैं आपको चॉइस देती हूँ दो गीतों की, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि फ़िल्म गाइड का आप कौन सा गीत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, कौन सा गीत आपके दिल के करीब है। आज फिर जीने की तमन्ना ए, गाता रहे मेरा दिल बी, और पिया तो से नैना लगे सी, ए बी सी। ए इज़ आज फिर जीने की तमन्ना है, बी गाता रहे एंड सी पिया तो से नैना लागे। कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी बता दें। लेकिन जो गीत आपने अभी अभी सुना था फ्रॉम द फिल्म कभी कभी, वो आप तक पहुँचाए किसने?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और ये मैंने चुना है from the film पत्थर की सनम। बहुत प्यारा गीत है, लता जी का साथ दे रहे हैं मुकेश जी। Enjoy कीजिएगा इस गीत को, और भी बहुत सी बातें होंगी बाद।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: और भैया अब सरिता आपको ये बताने जा रही है कि आतिफ असलम लाइव आ रहे हैं. लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द आतिफ असलम लंदन कॉन्सर्ट टेकिंग प्लेस ऑन 14th जून एट द O2 लंदन एंड टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड द वेन्यू. और लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन. डिटेल्स एट द लाइका रेडियो डॉट कॉम.
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: क्या बात है इन गीतों की। मनु जी आपने पिया तो से सुनना चाहता, हरीश बकरानिया आप भी बानेट में सुन रहे हैं, दिलीप एंचारू एंड जीतू भाई आपने सी को वोट दिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गीत को ज़्यादा वोट्स मिले थे। बी को भी कुछ वोट्स मिले लेकिन ज़्यादा मेरे साथ ही यही गाना सुनना चाहते थे, तो मुस्कुरा दीजिएगा। अब ज़रा आपको याद दिला दूँ कि लाइक रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद द सब रंग आर्ट्स ऑफ फॉर रमजात which takes place on Saturday 30th May at 7 PM at Millennium Center, Waldingham School, Caterham, CR37YA is the postcode. Experience live garba, timeless folk songs and vibrant dancers, bringing the true spirit of Gujarat to life. And you can also buy tickets from ticketsource.com /sabrang. It's SUBRANG /arts. And to win a pair of tickets, send the word Ramzat for your chance to win. A winner will be selected at random and at the end of the show. Oh, so it's a competition. Jaldi se, mujhe likh kar bhej dijiye. Kya likh kar bhejna hai aapne? Send the word Ramzat, RAMZAT. Aur end of the show, main announce karungi ki kaun hai winner. And tickets will be available at the box office under your name. Aur aap please apna naam aur mobile number zarur likhega. To तैयार हो जाइए, जल्दी से मैसेज करना शुरू करते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Like a extra podcast update.
0: हाँ जी, इसके बारे में भी बता दूं मैं जल्दी से कि क्या हो रहा है। लाइक अ एक्स्ट्रा न्यू एपिसोड है, एपिसोड 16 एंड टाइटल है इंडिया वीक शोकेस। अनुज राडिया ने इस शो को होस्ट किया है। टॉकिंग पॉइंट्स हैं इनके, लाइक अ रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th to 31st ऑफ मे। और पुराने आप एपिसोड देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, लाइक वेडिंग्स एंड Beyond Homeschooling Debate, Wills and Probate and like a extra podcast aapko kaise milega? Available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Like extra is here. Like a gold.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 0786028065। सखणा रेजो हस्बंड जी।
6: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स।
7: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
6: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स।
0: साढ़े 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208 767 2142.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट पल जल्दी से बता दें कि आपको क्या करेंसी रेट मिल रहा है आज. इंडियन रुपीस में एक पाउंड के बदले मिलेगा 129.23, पाकिस्तानी रुपीस 376.13, श्रीलंकन रुपीस 439.25 एंड बांग्लादेशी टका 165.76, अफगानीज 84.34.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: राइट गोल्ड का रेट है इस वक्त मार्केट में लेटेस्ट अभी जो रेट आया वो है 111 पाउंड्स एंड 68 पेंस पर ग्राम.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. This is Like a Gold. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
1: राइट भी आपको बता दें कि मैच शुरू होगा 3 बजे, बस थोड़ा ही वक्त बाकी बचा है और मैच है आज IPL का किसके बीच, पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस के बीच. तो इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, खेलेंगे खिलाड़ी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: मेरी वो साथी जो बराबर मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच. मैं वैसे व्हाट्सएप के ज़रिए आपको वापस जवाब दे रही हूँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं आपके नाम नहीं ले रही हूँ तो मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ. नहीं, थैंक यू एवर सो मच. और बहुत से नए नए नाम भी हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. इसी तरह से सुनते रहिए. और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, बात एक रात की फ़िल्म से मैंने चुना है, 1968 की फ़िल्म न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने. बहुत प्यारा गीत, वहीदा जी की ही फिल्म थी बात एक रात की, उसी फिल्म से मैंने चुना है इस गीत को. और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका जीवन हमेशा सुखी रहे, लंबा और निरोग जीवन रहे और इसी तरह से कभी कभार आके हमें अपनी शक्ल दिखाती रहें.
2: गोल्ड आफ्टरनून, गोल्ड आफ्टरनून प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया. दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, बस पेट संभाल जो क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने वाली है.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
6: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
5: Call today on 01923 883 100
6: or go to skylordcruiseandholidays.com.
5: Book with confidence.
6: We're atoll protected.

0: से
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियाँ लाए
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
3: पैक्ड फॉर द ट्रिप Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे
11: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
10: ये तो बताओ कोई पता चला
11: गुरु गुरु
12: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
10: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208-514-54 बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
15: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
16: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know. There's a lotto draw coming up, and
17: it could be you.
16: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
18: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
19: London. This is Bally Brambat on Laika Gold.

0: आशा भोसले एंड अनवर की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म आहिस्ता आहिस्ता। 1981 में आई थी ये फिल्म। एंड आज के प्रोग्राम के लास्ट आवर का आगाज मैंने किया मिस्टर बेचारा के गीत के साथ। 1996 की फिल्म थी, अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज़ें, खोई खोई आंखों में। दोनों गाने मुझे पसंद आए, आपको पसंद आए, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड भाई पम्मी सिंह जी स्लाव से क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको? अच्छा ठीक है, मैं बहुत अरसे से आपको सुन रहा हूँ, इतने सालों से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और जितने भी साथी अभी अभी जुड़े हैं, पेमी सिंह जी स्लाव से, विजय मानसी जी, अजाज जगदीश चीन बुशी, रमीला पटेल, हरीश रुडा जी, दिनेश पोपट जी, मनु जी, अब आपके नाम नहीं लिखे हुए, आपने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, तो देखते हैं कौन जीतता है आज, किसको टिकट्स मिलती हैं। दिलीप रोहित, एंचारू जी, जीतू भाई, मिल्टन किंग्स में नैना शाह, और आपका भी नाम नहीं है तो कौन है आप? हाँ, अपना नाम ज़रूर लिखा करें। हंसा वोरा जी, उल्लास इन टोरंटो, श्रीजीत अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम, मीरा एंड युगेश एंड हंसा वोरा जी, अर्जुन जी, हना जी, वाओ मृदु, इतनी लंबी लाइन है, तोची जी, रोहित जी, सलमा सलमा फ्रॉम मेडस्टोन एंड मोहम्मद यूनस साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साइदा मुगल, इंसलाव, रजिंदर सिंह कालरा जी एंड ईस्ट लंडन एंड पाके चियांग, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिसके नाम रह गए, प्लीज़ बाद में, थोड़ी देर बाद मैं कोशिश करूंगी और सभी के नाम लेने की। आइए अब ये काम भी कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 129 रुपीस एंड 5 पैसे फॉर 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। और आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़ा आसान काम है, वाया द ब्रांच, वाया ऑनलाइन और बाय यूजिंग द Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me or you.
10: South
5: Powerful travel. ATO protected.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
9: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
10: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
9: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
10: Her bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
9: Friends, family ya special night out, make it memorable.
10: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
9: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
10: Book your table today.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: लुकिंग टू बाय गोल्ड, सिल्वर और Platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
4: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: भाई हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं महेंद्र कपूर साहब. महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ मुझे भी बहुत पसंद है. उनकी गाए हुए गीत मैं अक्सर प्रोग्रामों में शामिल करती रहती हूँ और इस ख़ास गीत को शामिल करने की एक वजह ये भी है कि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था उनकी आज पुण्यतिथि है. उन्हें हम याद कर रहे हैं. नाम है इनका के अमरनाथ. उनकी फिल्म थी.

बहुत ही प्यारा सा गीत था और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किया। आर्टिस्ट ऑफ द वीक का हमारे हैं महेंद्र कपूर साहब इस हफ्ते और उन्हीं का गाया हुआ गीत था, लेकिन इस गीत को मैंने इसलिए जगह दी प्रोग्राम में क्योंकि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था वो उनकी आज पुण्यतिथि है कि अमरनाथ, जिनका पूरा नाम था अमरनाथ गिलराम खेतरपाल, वॉज बॉर्न इन मियांवाली पंजाब ब्रिटिश इंडिया एंड ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड in Miawali college years in Lahore and inspired by Hollywood and British movies Amarnath left home at a very young age 17 ke the jab unhone apna ghar choda film industry ko join karne ke liye after assisting various directors like B.R. Patel and Dhirubhai Desai phir unhone apna production house khol liya 1937 se 1951 ke dauran he directed 14 movies for Mohan Studio Studios and its sister concern and Ramneek Productions थी वो और उसके बाद फिर उन्होंने अपना भी जैसे प्रोडक्शन हाउस खोला एंड के अमरनाथ वॉज अ वेरी वर्सेटाइल मैन, ही वॉज नॉट ओनली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एंड ही डायरेक्टेड मैनी मूवीज बट ऑल्सो रोड द स्टोरीज एंड स्क्रीन प्लेज फॉर मैनी ऑफ हिज फिल्म ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर। हर जॉनरे की फिल्में उन्होंने बनाई लाइक थ्रिलर, एक्शन, सस्पेंस टू फैमिली सोशल ड्रामास, लेजेंडरी रोमांटिक ट्रेजेडीज, सेमी म्यूजिकल कॉस्ट्यूम ड्रामास एंड मैजिकल फैंटेसी मूवीज़ भी उन्होंने बनाई। और अजीत खान, इफ़ यू रिमेंबर, अजीत खान एक्टेड एज ए हीरो इन 7 ऑफ हिज फिल्म जो इन्होंने डायरेक्ट की, बेकसूर, मेहरबानी, सरकार, बड़ा बरादरी एंड बड़ा भाई, बारात एंड काबिल खान जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इन्होंने बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, नौशाद साहब, चित्रगुप्त साहब, ओपी नैयर साहब, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सब ने इनके फिल्मों में संगीत दिया। और श्याम सुंदर कंपोज्ड मैनी अनफॉरगेटेबल मेलोडीज सॉन्ग्स इन 3 ऑफ हिज हिट

0: मूवीज डायरेक्टेड बाय के अमरनाथ, गांव की गोरी एंड ऑल्सो मिर्जा साहिबा में भी उन्होंने काम किया था. एंड और भी बातें बताती हूँ, चलिए पहले ज़रा नेक्स्ट गाना हो जाए. डेरी वैली वाले आप तक पहुँचा रहे हैं और ये भी इन्हीं की फिल्म से नहीं, इनकी फिल्म से नहीं है, लेकिन अच्छा गीत है, आप पसंद करेंगे.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: और आज के प्रोग्राम का अगला गीत मैंने के अमरनाथ जी की ही फिल्म से चुना है। फिल्म का नाम था वो दिन याद करो, आपको याद है। पर उस गीत से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। के अमरनाथ वॉज वेल नोन फॉर प्रमोटिंग एस्पायरिंग यंग इंडिविजुअल्स एंड ही इंट्रोड्यूस सलीम खान, सलमान खान के फादर।

0: टू बॉलीवुड, और वो उसके बाद द फर्स्ट मूवी सलीम एक्टेड इन फॉर के अमरनाथ, और उस फिल्म का नाम था बारात इन 1960. संजय खान फर्स्ट मूवी साइन एज ए हीरो इन 1965 वॉज फॉर वो दिन याद करो, संजय खान ने जो पहली फिल्म याद की थी. एंड देन हेलन एक्ट्रेस गॉट हर फर्स्ट ब्रेक एज ए मेन सोलो डांसर इन के अमरनाथ अलिफ लैला इन 1953. ऑल्सो मीनू मुमताज, सिस्टर ऑफ फेमस बॉलीवुड कमेडियन महमूद, मेड हर फिल्म डेब्यू इन के अमरनाथ बड़ा बरादरी में इन 1955. एंड फोर ऑफ द हिंदी मूवीज डायरेक्टेड बाय के अमरनाथ, विलेज गोरी गिरी गुआम की गोरी इन 1945 एंड मिर्जा साहेब इन 1947, बी कसूर इन 1950, ये सारी फिल्में बहुत पॉपुलर हुई थी. अब उन्हीं की फिल्म का गीत आ रहा है जिसका नाम है वो दिन याद करो.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय मोहम्मद रफी साहब. नंदन ने इस फिल्म में काम किया था, साथ में थी संजय, शशिकला, महमूद, धूमल, मदनपुरी, बहुत सारे एक्टर थे. एंड दिस फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड, स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्टेड बाय के अमरनाथ जी, जिनको आज हम याद कर रहे हैं उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए. उम्मीद करती हूँ पसंद किया. और ये गीत आप तक किसने पहुँचाया?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: विजिट travelhubworld.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit WesternUnion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit SBI UK.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
10: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
9: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स.
10: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
11: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
12: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
13: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
12: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
13: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
13: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
12: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
13: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
16: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: 1964 में आई थी ये फिल्म. फिल्म का नाम था इशारा, रोमांटिक फैमिली सोशल ड्रामा था. दिस वॉज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय के अमरनाथ जी, जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं. विजयंती माला, जॉय मुखर्जी, जयंत और प्राण और बहुत सारे और आर्टिस्ट भी थे इस फिल्म में.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 129.15, Pakistani rupees 376.27, Sri Lankan rupee 439.36, Bangladeshi taka 165.80 and Afghanis 83.96.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Right upon... आपको आज गोल्ड का रेट मिलेगा 111 pounds and 69 pence पर ग्राम.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold, like a gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, भाई, IPL के मैचेस चल रहे हैं और आज मैच हो रहा है पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस के बीच. एंड मुंबई इंडियंस चूज टू बॉल फर्स्ट एंड पंजाब किंग्स ने बना लिए 95 रन्स इन 10.1 ओवर्स और उनका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Leica Gold. Leica Gold, traffic and travel.
3: Good afternoon. The Fulham Palace Road A219 is currently blocked. It's due to an accident in Lambrook Terrace. Take care there. There is a diversion in operation. Closed, like I say, though, in both directions at the moment, so it could take some time for that one to clear. The North Circular, meanwhile, at Wembley, a broken down vehicle near to IKEA, closing lane 1 of 3 on the northbound carriageway. Again, causing a bit of congestion there as well. M25 anti-clockwise in Kent. Usual delays at the Dartford Tunnel. Trying about 25 minutes if you're heading anti-clockwise. And A12 from Leighton to Wanstead as well. Looking busy at the Redbridge roundabout. It's around a 15-minute wait so far there this afternoon. And that's your latest traffic and travel.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Leica
4: Gold.
5: Bali Brumbutt on Gold Afternoons.
2: Leica Gold.
0: हाँ, बाली ब्रह्मभट्ट जी का ही शो है, लेकिन इस वक्त पेश कर रही है आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल. एंड आपका साथ दूंगी इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते भी, यस. और सैनी शाह इधर पहुंच चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथ. बात करेंगे आप हमारे साथ?
6: नहीं, आप लगी
0: रहे हमारे साथ बात करेंगे आप? अच्छा, विनर अनाउंस कर देते हैं. चलिए, रजमत के लिए, रमजत के लिए भूपेंद्र जी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर द विनर. और आप जाएंगे, आपको पूरी डिटेल्स हमने अर्लियर ऑन दे ही दी थी कि आपने कहाँ जाना है. अब मेरा और आपका साथ यहीं तक था. कल फिर मिलते हैं इसी जगह और छोड़े जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ. बाय फॉर नाउ.
7: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
8: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. Apta bonded.
9: Mantra Holidays.
10: What's your travel mantra?

0: है हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा, वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई, दी लाख दुहाई, वो एक न माना, पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला, फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा, मैं वापस भाग

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
4: खातून कौन थी?
5: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
4: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
6: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई।
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
0: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: International Siddhashram Shakti Center ki prastuti. Purushottam Mass mein aaiye aur divya aashirvad paaiye. 17 Mai se 15 June, pratidin dopahar 12 baje se 2 baje tak Shri Mad Bhagwat Parayan aur Shaligram Puja Bhagwan Vishnu ke hazar namon ke saath. Saath hi har shanivar Shri Raj Rajeshwar Guruji ke saath Sundar Kand Paath aur Hanuman Chalisa Healing dopahar 3 बजे से 7 बजे तक, स्थान 22 मामस्टल रोड, हैरो, HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
13: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
4: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
4: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
4: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
3: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823।
4: बुक योर टेबल टुडे।
5: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 02203-773-633 now. APTA bonded.
6: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
8: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
7: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
9: Cool Drive with Sandy Shah.
10: Oh yeah.
9: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: थ्रिलिंग थर्सडे में स्वागत है आप सभी का इस इवनिंग शो में. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. पूछे भाई आप सबसे कैसे हैं आप सब. उफ बढ़िया है कि नहीं. होंगे ही. वीकेंड आ गया जी, बस शुरू हो गया. बस दो तीन घंटे और हैं ना, फिर वीकेंड ऐसे ही शुरू हो गया. फ्राइडे आ गया. तो प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था तो बड़े ही अमेजिंग गीतों के साथ में. प्रेम दीवाने से पी पी पी पी पिया एनर्जेटिक सॉन्ग था, है ना. उसके बाद में आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में तू तू है वही फ्रॉम ये वादा रहा. वादा करके गए थे आपसे कि आपको अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे आके, जो कि दिन भर से शुरू है. एंड नाउ विद दिस शो मस्ती मज़ा इंटरेक्शन गप सप सब का सब शुरू हो जाएगा. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. सारे के सारे हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, आइए जी आइए, अपनी फटाफट हाजिरी लगाइए और फिर मैडम देगी आपको असाइनमेंट रोज़ की तरह. आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपकी लव मैरिज हुई है या क्या आपकी अरेंज मैरिज हुई है? एंड गिवन अ चांस, अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई तो क्या आप लव मैरिज करना चाहेंगी या करना चाहते थे या परिस्थितियां क्या रही? वट एवर, अगर लव मैरिज था तो क्या अरेंज मैरिज आपके लिए ओके है, और अरेंज मैरिज अगर हुआ है तो क्या लव मैरिज आपके लिए ओके है ना. बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट इफ गिवन अ चांस यू नो, अभी इतने सालों के बाद अपने अपने पार्टनर्स को आप खुलेआम बोल सकते हैं अरे यार इसे तो लव मैरिज अच्छा था, और लव मैरिज वाले बोल सकते हैं इससे अच्छा तो मैं अरेंज मैरिज कर लेती. वट एवर इट इज, जरूर हमें फटाफट मैसेज करके बताइए. एंड उफ वाले गीत एजाज जी, जब आप उफ लिखते हैं ना हर गीत के बाद में, आहा उफ.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपीस. याद रखिए आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI मोबाइल ऐप, और ये भी SBI UK मोबाइल ऐप.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Two businesses.
9: Same town.
8: Same service.
9: One appears on page one of Google.
8: The other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Disha Rice is available in all Asian grocery stores nationwide and Sony Cash and Carry, all Sainsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira Cash and Carry, Southall, Dagenham Supermarket, all exotic stores, Reading and Slough. Disha Basmati
1: Rice. वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
2: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन.
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स,
2: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल.
2: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट.
1: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823.
2: बुक योर टेबल टुडे.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
5: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
6: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 27 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। भाई मेरा सवाल जो है उस सवाल के जवाब में आप लोग जो अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, एक तो तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपनी इस जर्नी में मुझे हमराज बना के अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। मैंने आप सबसे पूछा कि अगर लव मैरिज हुआ है तो क्या आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे, या जो भी है यार, अगर लव मैरिज हुआ है तो यार मैं अरेंज मैरिज कर लेता, और अरेंज है तो यार मैं लव मैरिज कर लेता। वेल, आप सभी ने अपनी अपनी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ मुझे बनाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे क्या आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सेड कि आपके जो स्पाउस होते हैं, आपके जो बेटर हाफ होते हैं, कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म का कर्मा उनके साथ में कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। द स्पिरिचुअल एंगल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यस, जब आप अपनी स्टोरीज मुझे बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग भी अपनी अपनी शादियों के बारे में सोचते थे, और लव मैरिज हुआ है तो लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज हुए तो अरेंज मैरिज की है, एंड कभी कभी किसी ने दौड़ भाग कर अपनी शादी भी की है, वो भी किससे आप लोग सुना रहे हैं। थैंक यू सो मच। यू नो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर एंड स्पेशली सच अ लवली

0: सीमा जी कह रही अश्विनी मेरी एग्जाम है यार और मैं घर पे आई हूँ थकी आ रही, लेकिन तुम्हारा शो जो है इट मेक्स मी फील बेटर। थैंक यू सो मच। ये जो आप लोगों के फीडबैक आते हैं ना, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरे कंधे कितने झुक जाते हैं। कुछ आपके ध्यान में आ रहा है जब आप लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हो तो? थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारी आपकी जर्नी यहाँ पे चल रही है, गप्पे चल रही हैं, अपनी अपनी लव स्टोरीज, अपनी अपनी अरेंज मैरिज की स्टोरीज बिल्कुल मेरे साथ में यहाँ पे आइए, यहाँ पे गप्पे मारिए। क्यों मैंने ये टॉपिक बोला है इसके बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में। नेक्स्ट ट्रैक यार, मतलब थोड़ा मीडियम से ऊपर वॉल्यूम करना है तो कर लीजिए, बिकॉज रॉकी फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत आप सबके लिए।
1: ये है Like a Gold, The Evening Show with Ashwini।

0: क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों के रिस्पांस जिस तरीके से आ रहे हैं ना, मतलब मज़ा आ रहा है। एंड एजाज जी, आपकी तरह भी मैं इस गीत के लिए मैं भी कहने वाली हूँ उफ, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक है ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है मुझे। दो लोग जब प्यार में होते हैं तो वो कितनी सुंदर तरीके से एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स बयां करते हैं। एंड दिस एक्चुअली हैपेंस ना, हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए फिर मिल के मिले, ऑल दिस अमेजिंग, लव दिस ट्रैक, दिस वॉज फ्रॉम रॉकी। अगला ट्रैक आप सबको सुना रही हूँ एंड दैट इज यादों की बारात, आर पार फिल्म से। 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। अब ऐसा है भाई कि शादी वाला टॉपिक चल ही रहा है आज तो कभी अर कभी पर।
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
1: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैस में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए. 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ. साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरुजी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और visit Siddhashram official website.
3: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
7: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
6: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
7: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
6: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Prem past and future vache atkailu ek deal.
11: Tumne shu lage che. Hu ya sache wedding plan karvavi chu.
10: Wa ki chuki love story. Starring Pooja Joshi, Parikshit Tamalia, Bhavin Bhanushali, Miloni Johnsa. A film by Dhwani Gautam. Releasing on 15th May.
12: Aa family wali feeling ne main tya bahut miss kari chu.
13: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
14: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
13: Call today on 01923 883 100.
14: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
13: Book with confidence.
14: We're Atoll protected.
15: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
16: For £1, you'll get 128.29 Indian rupee, 373.32 Pakistani rupee, 435.94 Sri Lankan rupee, 164.52 Bangladeshi taka, 83.56 Afghani.
17: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
18: Gold is currently trading at £111.84 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Ashwini, brightening up your weeknights.
19: India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
18: Mumbai Indians and Punjab Kings ke beech mein match hua, jisme Mumbai Indians won by 6 wickets.
19: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
18: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. फर्स्ट आवर का फीचर यादों की बारात आप सबको सुनाया आर पार. आज का टॉपिक फर्स्ट आवर में चल रहा है लव मैरिज, अरेंज मैरिज. बहुत ही सुंदर कहानियां आप लोग सब मुझे सुना रहे हैं, थैंक यू सो मच. अच्छा, आज का मौसम जो है, वर्षा रानी अपनी आ गई छम छम छम करते हुए, और बारिश आ रही है, जा रही है, कल भी वही होने वाला है. तो जब बारिश आना जाना कर रही है तो एक गीत तो बनता है बारिश पे. लता मंगेशकर की आवाज़ में चुपके चुपके फिल्म से मैं आप सबको ये बहुत ही प्यारा गीत सुनाना चाहती हूँ, जिसे फिल्माया गया है शर्मिला टैगोर पे. एंड और कौन थे भाई, धर्मेंद्र थे इस फिल्म में, है ना, चुपके चुपके अमिताभ बच्चन भी थे, लेकिन स्पेशली दिस ट्रैक, आई जस्ट लव दिस ट्रैक. वो पर्दे के पीछे खड़े होते हैं ना धर्मेंद्र जी, बड़ा मज़ा आता है. एंड अगला ट्रैक उसके बाद जो होगा, विच इज़ द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम ब्लफ मास्टर, मुकेश जी की आवाज़ में. सो जो मुकेश जी की आवाज़ में गाना सुनना चाह रहे थे, बिल्कुल आपके लिए भी आ रहा है. देखिए, पूरी वेरिएशन हम लाने की कोशिश करते हैं शोज में, और आप लोग इतना खुश हो कि हर एक गीत पे जिस तरीके से आप लोगों का फीडबैक आता है ना, तो एज आई सेड कि हमें भी बहुत बहुत मज़ा आता है. तो डिनर टाइम के साथ में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं शो, और हमेशा कहा जाता है कि खाते समय जो आप सोचते ना, वैसे आपका स्वभाव, वैसे आपका नेचर बनता है. तो आई एम श्योर कि बड़ा म्यूजिकल नेचर होगा आप सबका, है ना. एक तो लाइका गोल्ड सुन रहे हो आप यहाँ पे लंदन में, एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. एंजॉय द शो.
20: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: शादी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner Leica Radio.
3: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
10: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
9: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
10: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
11: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
12: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
11: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
12: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
11: दर्शन पण अने यूरोप पण।
12: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
11: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
12: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
14: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02086777627।
15: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
16: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: मिला लेंगे घर या देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:14 हो रखे हैं। इट्स 14:08। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड हमारी वेबसाइट पे एंड हमारे ऐप के थ्रू ग्लोबली आप जहां पे भी हमें सुन रहे हैं। तो सेकेंड आवर में आपने हमने मार ली है एंट्री। थर्सडे है तो थ्रिलिंग थर्सडे के लिए कोई ना कोई गीत लेके आई है अश्विनी। 14 मई आज की डेट है, आधा साल तो नियरली निकल चुका है 2026 का। कैसे बीत रहा है बाय द वे ये साल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्बिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है ऑल अराउंड, लेकिन ज़रूरी है कि कभी कभी हम अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात कर ले जिंदगी में, कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ के बारे में भी बातें होती जाए। सो ब्राज़ील हैज इंट्रोड्यूस्ड डॉग थेरेपी प्रोग्राम्स इन हॉस्पिटल्स वेयर ट्रेन्ड डॉग्स विजिट पेशेंट्स टू ब्रिंग कंफर्ट एंड रिड्यूस पेन एंड एंजाइटी। इस गुड न्यूज़ के बारे में मैं ज़रूर इतना ऐड कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव अ डॉग इन माई हाउस। इट्स ऑलवेज सेड कि पीपल हु हैव डॉग दे कैन नॉट गो इन टू डिप्रेशन बिकॉज इतना सेल्फलेस और इतना प्योर लव आपको मिलता है एनिमल्स की तरफ से। ह्यूमंस के प्यार में मिलावट होती है यार, मतलब ही पन होता है कहीं ना कहीं, है ना। एंड आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है, हम सभी ने ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ पेट इन द हाउस सेल्फलेस लव चाहते हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी आपको टिल द एंड तहे दिल से करनी होती है। मतलब आप अपने वक्त निकालना चाहते हैं अपने लिए, तो वो वक्त जो है उस वक्त में आपका ये पेट हमेशा आपके साथ रहेगा। दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस स्पीकिंग फ्रॉम पास्ट 7 years। आई एम जस्ट सो मच इन टू माई पेट डॉग एंड शी इज़ अ फैबुलस लैब्राडोर। शी इज़ अ ब्लैक फीमेल लैब्राडोर, पीच इज़ माई डॉग। एंड थेरेपी जो होती है ना, मतलब आपको जो लगता है ना कि अश्विनी इतने एंथुसियाज्म में यहाँ पे आके बैठती है, इतनी हैप्पी हैप्पी साउंड करती है, आई थिंक द क्रेडिट शुड गो टू माय डॉग।
1: Like a Gold, ऑफिशियली लंदन'स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।
2: ये है Like a Gold, 10:35 AM।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 129 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: The Evening Show with Ashwini.

0: चलिए मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 29 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप लोग सभी अपने पेट्स की तस्वीरें भेज रहे हैं, किस तरीके से आपने उनकी उनके लिए छोटे छोटे घर बनाए हैं, छोटे छोटे बेड्स भी हैं। दैट्स ब्यूटिफुल, आई एम लविंग। आपके पास अगर पेट्स हैं तो प्लीज़ उनकी पिक्चर्स मुझे भेजिए। आई रियली एन्जॉय व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। समथिंग विच आई रेगुलरली लुक ऑन द रील्स इज एनिमल की रील्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पेट एनिमल्स की रील्स। मैंने मोस्ट ऑफ माय पेजेस इंसानों से ज़्यादा तो मैंने एनिमल्स के पेजेस लाइक कर रखे हैं, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है कि कितने डेडिकेटेडली ये जो पेट्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, और इनको प्यार की भाषा कितनी समझ में आती है। यू नो, बहुत बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ और रील्स मुझे देखना अच्छा लगता है। उसके बाद द मैक्स नंबर ऑफ रील्स एनिमल्स के बाद में मैं देखती हूँ छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आप कितना भी स्ट्रेसफुल डे आपका रहे, कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहे, जब ये रील्स आप देखते हैं ना एनिमल्स की और छोटे से न्यूबॉर्न बेबीज की और छोटे जो बच्चों की, यू स्माइल फॉर श्योर। सो ज़रूर अपने मूड को अपलिफ्ट जब भी करना हो तो ये रील्स ज़रूर देखते चलिए। आ गए हैं हम इमोशन ऑफ द डे, इट्स थ्रिलिंग थर्सडे। थ्रिलिंग थर्सडे में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गीत मैं चुन के लाई हूँ कोहिनूर फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, मधुबन में राधिका, क्लासिकल ट्रैक आप सबके लिए।
1: ये है लाइका गोल्ड। अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे
1: ये है लाइका गोल्ड
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Radio Network, across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.26 Indian rupee, 373.29 Pakistani rupee, 435.9 Sri Lankan rupee, 164.48 Bangladeshi taka, 83.62 Afghani.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £111.84 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Like a gold. Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: मिला लेते हैं घड़ियाँ, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो भाई अभी टाइम हो चला है 49 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ, इवनिंग 7 to 10 PM। तो 3 घंटे मस्ती मज़ा गपशप होती है आपकी, हमारी यहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, स्टोरीज होती है, खाने की पिक्चर्स होते हैं, साथ में चाय वाय भी आप लोग पिला देते हैं मुझे, मेरे हालचाल पूछते रहते हैं, अपने हालचाल बयां करते हैं, यही तो चाहिए। दैट इज व्हाट द शोज आर ऑल अबाउट। बिल्कुल जी, और गीत जिस तरीके से आप लोग पसंद करते हैं, आय हाय मजा आ जाता है उनमें। हाँ जी, तो आज इट्स 14th ऑफ मे, और 14th ऑफ मे के दिन क्या क्या मनाया जाता है? तो आज मनाया जाता है ऑनलाइन रोमांस डे, वर्चुअल रोमांस, नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे, इंटरनेशनल चुवावा एप्रिसिएशन डे, डॉग्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके पहले, नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे, हाँ जी, उसके बाद है नॉइज एक्शन वीक, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स फॉरएवर डे, इंटरनेशनल डायलिन थॉमस डे, नेशनल डीसेंसी डे, जी डिसेंटली बिहेव करना चाहिए, इसके लिए भी डिसेंसी कैन साउंड ओल्ड फैशन लाइक समथिंग दैट बिलोंग्स इन एटिकेट बुक्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, इन रियलिटी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टूल्स अ कम्युनिटी हैज, डिसेंसी इज द एवरीडे चॉइस टू ट्रीट पीपल विद बेसिक रिस्पेक्ट इवन व्हेन ओपिनियंस क्लैश, स्ट्रेस रन्स हाई और नोबडी इज वॉचिंग यू, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, कभी भी पोलाइट वे में अपनी चीज़ें सामने वाले को बताइए। देखिए, जो चीज़ आप ले नहीं सकते ना, वो चीज़ कभी दूसरों को देना, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी वही कहेंगे कि भाई अगर आपने हमें ये चीज़ कही है तो बी रेडी टू टेक इट दैट वे, है ना। सो जिस तरीके से, और देखिए डिसएग्रीमेंट्स हर रिश्ते में होती है, डिसएग्रीमेंट डजंट मीन दैट पर्सन हेट्स यू, इट्स जस्ट दैट यू टू पीपल डोंट अग्री ऑन अ सर्टन लेवल बिकॉज उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। कितनी सिंपल चीज़ है ना, लेकिन ना जाने क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कोई ना कोई ना, नेक्स्ट ट्रैक आपको फिर वही दिल लाया हूँ, उसे सुना रही हूँ, वही ट्रैक ले चलेगा न्यूज़ की तरफ।
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
4: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
5: Call 01923-883100. At all protected.
6: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
7: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
6: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
0: The Evening Show with Ashwini.
3: Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: थर्ड आवा में आपकी हमारी एंट्री हो चुकी है। पहला गीत हमने आपको सुनाया था खिलाड़ी फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1992, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में वाद आ रहा सनम। व्हाट अ फैबुलस शांत एकदम प्यार भरा ट्रैक। उसके बाद आप बैठ मेरे पास, यादों की कसम, इस फिल्म से सुनाया ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आप बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। अभी ये गीत ना सिर्फ आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर को डेडिकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली उन्हें तो कर ही सकते हैं, साथ ही आपके बच्चे भी हैं, आपकी बेटी भी है, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, आपकी बहन भी है, आपकी मम्मी भी है, आपके पापा भी। आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे देखती रहूं, है ना। ये वाला होता है, कभी कभी प्यार के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके नैन, आपकी जो प्यार भरी एनर्जी है वो अपने आप सामने वाले को फील होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ व्हाट द एनर्जी ऑफ लव इज़ ऑल अबाउट। और हम जो गीत संगीत यहाँ पे आपको सुनाते हैं वो कहीं ना कहीं प्यार को दर्शाता है शब्दों से। नेक्स्ट ट्रैक जो सुनाने वाली हूँ, दैट इज़ अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम बालिका बदू। आज बिकॉज मैं आप समझ चुके हैं कव्वाली रहेगी या होगी गज़ल, तो बिल्कुल आज कव्वाली प्ले करने वाली, और बिकॉज इट्स अ बिग कव्वाली सो थोड़ा लेट मैं सुना रही हूँ वो कव्वाली आप सबको। अभी जो नेक्स्ट ट्रैक आने वाला, दैट विल बी अमित कुमार की आवाज़ में बालिका बदू से। अगेन व्हाट अ फैबुलस ट्रैक, बड़े अच्छे लगते हैं।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.
2: ये है
3: Laika Gold.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling today, you could get up to 129 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: मिला लेंगे घड़ियाँ, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। सो इट्स 21 मिनट्स पास्ट 9। घड़ी पे जब 21 21 21 मुझे भी दिखा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो होते ना, ये एंजेलिक नंबर्स होते हैं, एंड पीपल हु नो अबाउट एंजेलिक नंबर्स, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नो समथिंग इज इन अलाइनमेंट इन योर लाइफ, तभी तो आपको एक जैसे नंबर्स दिखने लगते हैं। फैंटास्टिक, दिस इज थ्रिलिंग थर्सडे। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। सो के आपने कहा कि आप बैठ मेरे पास प्लीज, क्या ये गीत आप मेरी मम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपकी मम के लिए ये गीत हमारी तरफ से डेडिकेटेड। नलिनी जी, आपने कहा आपके बेटे का बर्थडे था, तो उसे बहुत सारी शुभकामनाएं लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से जो लंदन में है, एंड लाइका रेडियो जो कि ग्रेटर मैनचेस्टर में है, एंड अश्विनी जो कि फिलहाल स्टूडियो में है, हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। द नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है आर्टिस्ट ऑफ द वीक महेंद्र कपूर के आवाज़ में, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। एज आई सेड कि मैं कव्वाली थोड़ा लेट सुनाने वाली हूँ, लेकिन आपकी हमारी गपशप यहाँ पे जारी है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, चाहते कि हम विश करें तो ज़रूर हमें मैसेज करते रहिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Sophie's kids weren't channeling their inner gladiators at the Colosseum by accident. She booked a guided tour on Get Your Guide. Chance didn't have Ben baking pastel de natas with a Portuguese grandma, not his grandma, a pastry chef he found on Get Your Guide. And luck didn't make Jen swap flip-flops for flippers on a Maltese Sea Caves tour. That's right, Get Your Guide strikes again. The best parts of travel don't just happen. You make them happen with Get Your Guide. Book forward to it.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio. Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected.
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
9: Atif Aslam, live in the UK.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ,
11: તમને શું લાગે છે? હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવા આવી છું.
10: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી, સ્ટારિંગ પૂજા જોશી, પરીક્ષિત તામલિયા, ભાવિન ભાનુશાલી, મિલોની જોન્સા, અ ફિલ્મ બાય ધ્વની ગૌતમ, રિલીઝિંગ ઓન 15th મે.
12: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે.
1: Like a gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Leica Gold. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on the evening show. Leica
1: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट

0: MeraBoiler.com. T's and C's apply.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.3 Indian rupee, 373.27 Pakistani rupee, 435.88 Sri Lankan rupee, 164.49 Bangladeshi taka, 83.26 Afghani.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £111.84 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: Leica Gold.
6: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. It's 37 minutes past 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. कव्वाली, बिल्कुल आज हम प्ले करेंगे कव्वाली आपके लिए. एंड व्हाट अ फैंटास्टिक कव्वाली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. द बर्निंग ट्रेन विच वॉज रिलीज्ड इन 1980, उस फिल्म से पल दो बल का साथ. क्या बात है जी. अच्छा, ये वाली कव्वाली ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट पे लग चुकी थी एंड एजाज जी ने कहा कि अश्विनी जी कैसा हो अगर आज आप ये कव्वाली प्ले करें. एंड देखिए ना कि आपके और हमारे म्यूजिकल विचार कितने जुड़ते हैं. तो जिन लोगों ने भी आज लेट ज्वाइन किया, कल ज़रा जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा 7 से 10 बजे तक. कल आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी, बड़े मस्ती भरे गीत होंगे. खाना वाना खा के बैठिएगा क्योंकि सारी की सारी कैलोरीज हमें बर्न करनी है. लास्ट दो ट्रैक्स के साथ आपको छोड़ के मैं जा रही हूँ, लेकिन कल मिलने का वादा ज़रूर. हमेशा की तरह यही कहूँगी कि जीवन बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं एंड साथ में प्यार जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है. तो भाई कोई भी अपने पावर का यूज़ ना करे, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. तो फ्राइडे है, कल मस्ती मज़ा इंटरेक्शन होगा. हमेशा की तरह एक चुलबुला सवाल लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी आप सबके लिए. लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी प्यार जिंदगी है एंड दैट इज़ फ्रॉम फिल्म हीरो. प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं शाम को. तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Leica Gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।